जति पकाए नि मान्दिन कानाछी के छ र मेरो खोटा। नमस्कार, म गायक अनन्त घिमिरे, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ लेख बेसीको धुन रेडियो अरुण, सधैँ सुन्नुहोस् है।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक It's 10 AM
2: अहिले बिहानको 10 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक 6 PM
2: अहिले साँझको 6 बज्यो।

0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz हरपल
1: हर
0: तपाई सँगै
2: रेडियो अरुण टाइम चेक 7 PM
3: अहिले साँझको 7 बज्यो।

0: रेडियो अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 PM
3: अहिले रातको 8 बज्यो।

0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz
1: हरपल
0: तपाईसँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 9 PM
4: अहिले रातको 9 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz हरपल हर तपाईसँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 5 AM
4: अहिले बिहानको 5 बज्यो।